0: KZSU Stanford.
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल साथियों, ये है KZSU Stanford 90.1 FM. मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम.
2: KZSU Zootopia is our robot curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past 2 decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाय टाइम पर हमेशा हम अलग अलग तरह के गाने एक थीम को लेकर चुनते हैं और सुनते हैं, लेकिन आज की खास बात यह है कि हम एक ही गाने के अलग अलग रूप, अलग अलग अंदाज देखेंगे. और चाहे वो आधुनिक संगीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिर लोक संगीत, हर विधा की अपनी एक अलग विशेषता है, एक अलग मजा है और एक अलग खासियत है. बात होती है उस गाने में सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही रंगा हुआ हो, डूबा हुआ हो. और बात जब डूबने की, समझने की और रंगने की आती है तो फिर बात आती है कबीर की. कबीर एक रहस्य मिस्टिक पोएट जिसे हम कहते हैं, रहस्यवादी कवि और भक्ति काल के सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कवियों में से एक रहे हैं. और वो न केवल कवि थे बल्कि एक दार्शनिक, एक तत्वज्ञ, एक समाजवादी थे. और ज़िंदगी की हर छोटी छोटी सच्चाइयों को, अनुभूतियों को रोज़मर्रा के अनुभवों से और चीज़ों से जोड़कर वो हमको समझाया करते थे. कबीर की वाणी का सबसे खास पहलू वही है कि गूढ़ से गूढ़ रहस्य, बड़ी से बड़ी दर्शनात्मक तत्व की बात वो ऐसे सहज शब्दों में हमें समझाते थे कि बात एकदम दिल तक जाती थी. और बात जब दिल तक जाने की हो तो एक आवाज़ है जो दिल तक जाती है, और वो मेरे लिए एक ऐसी आवाज़ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ. जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं गणपति की पूजा से, अपने इष्ट देव से. वैसे ही संगीत का चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या कबीर की बात हो, तो मेरे लिए उसकी शुरुआत होगी हमेशा ही मेरे लिए, जो आज के आधुनिक युग के जो कबीर हैं वो कबीर जैसा नहीं कहते, वो तो खुद ही कबीर हैं. कबीर की बातों को जिस ढंग से वो समझाते हैं, जैसे वो गाते हैं, तो मानो हमारे अंदर एक कबीर अपने आप जागृत हो उठता है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मालवा के सुप्रसिद्ध कबीर गायक श्री प्रह्लाद सिंह टिपानिया जी की. लोग उन्हें पद्मश्री गायक कहते हैं, महान गायक कहते हैं, पर मेरे लिए वो एक संत है जो सीधी सच्ची बातों को इस गहराई से, इस सुंदरता से गाते और समझाते हैं कि हमारे दिलों में उतर जाते हैं. तो चलिए, कबीर का सबसे जो खास एक भजन है, झीनी रे झीनी चदरिया, उसके अलग अलग रूप अलग अलग गायकों से हम सुनेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम माननीय श्री प्रह्लाद सिंह टिपानिया जी की आवाज़ से. जुड़े रहिए.

तो साथियों, आपने सुना जीनी रे प्रह्लाद सिंह टिपानिया जी की आवाज में, और प्रह्लाद जी को श्रेय जाता है देश विदेश में, गांव में, शहरों में, हर जगह कबीर की वाणी को इतने सुमधुर ढंग से प्रसारित करने, फैलाने और समझाने का, और हमेशा उनका साथ देते हैं उनके साथी कलाकार देव नारायण सरोलिया जी, अजय टिपानिया जी, विजय टिपानिया जी, धर्मेंद्र टिपानिया जी और अशोक टिपानिया जी। तो ये था संगीत मालवा का। जब मालवा के संगीत की बात हो, वहाँ की मिट्टी की बात हो, वहाँ की मिट्टी की खुशबू की बात हो, तो एक नाम हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुमार गंधर्व जी की। तो चलिए अगला भजन, यानी यही भजन उनके अंदाज में हम सुनते हैं, झीनी रे झीनी रे।

बहुत बहुत सुंदर संगीत, सिर्फ सुर ताल लय थाप की ही बात नहीं है, बात है उस संगीत से एकाकार होने की, उसे इस स्तर तक समझने की कि शरीर पे रोमांच आ जाए, आंखों से आंसू बहने लगे। और वो हाल होता है जब आप प्रह्लाद जी को, कुमार गंधर्व जी को गाते सुनते हैं। तो ये आवाज आपने सुनी कुमार गंधर्व जी की। और बात जब संगीत को सुनने की, समझने की हो, तो मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी उनकी बेटी, कुमार गंधर्व की बेटी कलापिनी की किताब कालजयी कुमार गंधर्व से, जो शुरू होती है स्वयं कुमार गंधर्व जी के आत्मकथ्य से। वो कहते हैं, सब कुछ मैं कैसे जान पाऊंगा, कितना ही ध्यान लगाया, कितना ही ज्ञान पाया, संगीत के अगम्य रूप की थाह मैं अब तक नहीं ले पाया हूं। संगीत अमूर्त है, उसके रागों और स्वरों का बोध हो पाना बड़ा दुरसाध्य है। मैंने बेशक विकट तालों की, लयों की राह पकड़कर खोजने की कोशिश की है अब तक, लेकिन न तो मैं उसकी थाह ले पाया हूं और न ही छोर तक पहुंच सका हूं। साथियों, ऐसा ही है यह संगीत, अगम्य अथाह, जितना सुनिए उतना ही आप उसमें डूबते चले जाएंगे। तो चलिए डूबते हैं अगली आवाज में, मुख्तियार अली की आवाज में हम सुनते हैं वही भजन, कबीर का लिखा।

बहुत बहुत सुंदर। बात जब कबीर की हो तो उनकी शख्सियत को, उनकी वाणी को, उनके भजनों को किसी समुदाय, जाति या सरहद में नहीं बांधा जा सकता। और वैसे ही हैं मुख्तियार अली जी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, लेकिन गांव, घर, परिवार की सरहदों को पार कर देश विदेश की हर जगह की जनता के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। उन्हें हम सुने तो हमें समझ में नहीं आता कि वो कबीर में रचे बसे हैं या कबीर उनमें रच बस गए हैं। तो बस शुरू रखते हैं हमारा यह सफर, और एक ही भजन कबीर का, उसे हम सुनते हैं अलग अलग अंदाज में। और अगली आवाज शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई, जी हाँ, पंडित जसराज की।

तो ये थे आपके लिए पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे चार पीढ़ियों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक से बढ़कर एक संगीतकार देने का गौरव प्राप्त है। उनके पिताजी पंडित मोतीराम जी स्वयं मेवाती घराने के एक बहुत ही कुशल संगीतज्ञ थे, लेकिन हालांकि प्राथमिक शिक्षा संगीत की पंडित जसराज ने अपने पिताजी से ही पाई, लेकिन जब पंडित जसराज 3 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और फिर उन्होंने संगीत का अध्ययन किया अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी से। तो चाहे शास्त्रीय संगीत के कठिन से कठिन सुर हों या फिर कबीर के भजन, जसराज जी ने हर शब्द को हर सुर को इतनी निष्ठा के साथ इतनी कुशलता के साथ गाया कि चाहे आपको संगीत की परख हो या न हो, लेकिन आपको उनके सुनने में उनको सुनने में उनके संगीत में एक अलग ही तरह का आनंद मिलता है। तो साथियों, ये है KZSU स्टैनफर्ड 90.1 FM। मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम, और चाय टाइम पर आज आप सुन रहे हैं कबीर का लिखा एक खास भजन, चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, और इसे आप सुन रहे हैं अलग अलग गायकों की आवाज में अलग अलग विधाओं में। तो अब हम रुख करते हैं आधुनिक विधा की ओर और इसी भजन को हम सुनते हैं।

तो ये वर्जन आपने सुना इंडियन ओशन का. इंडियन ओशन भारत की राजधानी दिल्ली के एक समकालीन फ्यूजन संगीत बैंड के नाम से जाना जाता है इंडियन ओशन. और कुछ संगीतज्ञ इसे जैज़ और कुछ इसे भारतीय रॉक संगीत का मिश्रण मानते हैं. इनकी शैली में श्लोक, सूफीवाद, पर्यावरण की बातें, पुराण, क्रांति सभी कुछ समाहित है. और ऐसा ही आधुनिक समय का यूथ को कबीर से, संगीत से जोड़ने वाला एक और बैंड है जिसे हम जानते हैं कबीर कैफे के नाम से. तो अगला वर्जन जो हम सुनेंगे वो है कबीर कैफे का, जो मुंबई स्थित फ्यूजन बैंड है. और कबीर को आम जनता तक, खासकर युवा पीढ़ी तक, वो एक अपने नए ढंग में, नए अंदाज में पहुंचाने का काम करता है. तो आज हम सुन रहे हैं कबीर के एक भजन के अलग अलग नए रूप और नई छटाओं के साथ अलग अलग संगीतकारों और गायकों के अंदाज में कबीर का भजन चदरिया झीनी रे झीनी. तो साथियों, घड़ी का इशारा हो गया है और आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं कबीर कैफे के इस भजन के वर्जन के बाद. तो आज का ये एपिसोड और आज के सारे एपिसोड आप सुन सकते हैं soundcloud.com/chaitimeradio पर. तो जैसा कि हमने शुरुआत की थी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए. तो साथियों, बस जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगी कि ऐसी करनी कीजिए कि किसी को न रुलाएं बल्कि हर किसी को हंसाएं और प्यार का, प्रेम का, सद्भाव का एक ऐसा माहौल बनाए कि ना कभी आप दुखें और ना किसी को दुखाएं. तो चलिए इसी दुआ के साथ हम फिर से एक बार एक नए अंदाज में सुनते हैं चदरिया झीनी रे झीनी. फिर मुलाकात होगी अगले रविवार इसी समय. जुड़े रहिए चाय टाइम से, सुनते रहिए चाय टाइम. बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर.